गुरु नानक ले ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ति आइया, जिस दिठे सब दुख जाए।

तीर्थ में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। नाम चित आवे चित आवन का।

हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे उधर है सगरी कीटा। रहा संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर धन पाया। कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया।